17 साल से जा जुड़ा हूं, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूं और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी के जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था